बुलाया, सारी बिरादरी बैठी, पंडित जी सच सच दस दियो, नहीं तां पिंड विचों ही कढ देंगे, शहर विचों ही कढ देंगे, सच सच दस दियो। फुल जल परवाह करके आए हो कि नहीं आए, तां पंडित ने झूठ नहीं बोलिया, कहन लगा मैं सच कहां, जेड़े पैसे तुसी मैनू दिते सी ना, मैं आख्या भाई रस्ते में चोर लोटी ना लैन, ते मैं फुलां वाला चोला जो है एक दरख्त ते टंग के भाई इनू किने लै जाना है। मैं घर आया, पैसे रखे, जदों वापस गया तो चोला कोई नहीं सी पिया, ते मैं सब कुछ और किरिया कर्म, जो कुछ भी कर्म कांड सी सब कुछ करवा आया, पर तुसी सारे ही सियाने हो, सारी बिरादरी नू मुखातिब करके कहन लगा कि सेठ बनारसी दास तुहाडे वीहां पंजियां कोलों नहीं गया हरिद्वार, कितने जतन कीते हन तुसी उसनू ले जाण दे, ते तुहाडे वीहां पंजियां कोलों नहीं गया, ते मैं निमाणा कला सां, मेरे कोलों किवें जा सकदा सी। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। लखां करोड़ां जोड़े होए किस काम आए, हड्डियां भी रुल गई, हड्डियां भी नहीं पहुंच सकियां, तो इसे लिए हजूर बख्शिश करते हैं कि सुतड़े असंख माया झूठी कारण है, माया दे विच मगन होए होए, तंदियां दे विच मगन होए होए, असंखा ही सुते होए हैं। हे निरंकार, जागदे तां ओ हन ना जो शौक दे नाल, जिन्हां नूं मरना चेते है और अमृत वेले जाग के इशनान करके तेरा सिमरन करदे हन, ओ जागदे हन। जिहड़ा मनुख नितनेम नहीं कर रहा, सिमरन नहीं कर रहा, प्रभु भक्ति नहीं कर रहा, वो खांदा पींदा कार विहार करदा, सोने बस्तर पहनदा, सेजावां मानदा, महलां विच रहिंदा होया भी सुता होया, क्योंकि परमेश्वर दे पासे वलों जिहड़ा सौं गया उहदे भाग ही सौं गए हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। अमोलक श्वास वाहिगुरु ने बख्शिश कीते हन। हजूर कहिंदे ने प्रभ मिलबे की लालसा, तां ते आलस कहां करो रे, क्यों आलस कर रहे हैं भाई, जे तैनू प्रभु दे मिलन दी लालसा होवे, प्रभु दे मिलन दी जिन्हां नूं लालसा है वह कदे शौंके रातां बिताते हैं, वह तां जाग के उसके गुण गाते हैं। इसलिए भगत कबीर जी नाम जपते हुए भी, सेवा सिमरन सास ग्रास भगती करते हुए भी कहिंदे हन मेरी मत बौरी, क्योंकि मैं राम बिसारे, मैं परमेश्वर का सिमरन भुल गया। इस शब्द विच पंज झगड़े दसे हन, सास की दुखी ससर की प्यारी, सास की दुखी, सास की है, सास है ए दुनियावी माया, ते ससर की प्यारी, ए भी तां अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर ने ही बनाई है ना माया भी, इसलिए ससर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे। कबीर जी कहिंदे हन के जम कोलो मैनू बड़ा डर लगता है, जदों उसने श्वासां दा लेखा मंगना तां मैं की मुंह विखावांगा, सखी सहेली ननद गहेली, ननान रूपी धंदे जेड़े हन ना, ना ने मेरी माती मार दिती है, देवर के बिरहों रो रे, शुभ मत नूं मैं तरसदा रहना हर वेले, ते बाप सावका करे लड़ाई, ए बाप सावका की है, ए है ए शरीर, क्योंकि ए शरीर रहना नहीं, बाप सावका करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े भाई के जब संग होती, तब हो नहा प्यारी। आखरी तुका विच कबीर जी दस रहे हन के संसार दे ए पंज झगड़े, नौ सस दा, निनान भरजाई दा, जेठ देवर दा, ए पंज झगड़िया विच ही सारा संसार डुब गया है,
ਤੇ ਤਰੇ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

पंच को झगड़ा झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए, बस इना पंजा झगड़िया विच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया विच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे हन, अब मैं कौन उपाउ करूं, जे बिद मन को संसा चूके पवनिद पार परो, जन्म पाए किश पलो ना कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे हन, भाई सुख तां उना ही पाया है जिन्हां ने जपिया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तां सारे जग नूं बनिया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख कांस्यों कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसारियो, किन बिद रैन रहोरे, बाप साब का करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े पाई के जब संग होती तब हूँ ना है प्यारी, कहत कबीर पंच को चगरा चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन, मैं राम रमत

गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी इस शब्द विच बख्शिश कर रहे हैं ऐ मनुख बिना सिमरन दे होर जितने भी कर्म कांड हैं दुनिया दे कर्म हैं पुन दान जप तप इना नू फल नहीं लगन वाले कहो नानक एह तत बिचारा जपा सिर जप की है प्रभु सिमरन है तपा सिर तप की है आख्या प्रभु दा सिमरन है कर्मन सिर कर्म केड़ा कर्म है हर को नाम जप निर्मल कर्म प्रभु सिमरन तो बिना तेरा छुटकारा नहीं हो प्रभु सिमरन तो बिना जितने भी होर तेरे कर्म हन ओ जीरो हन ते जीरो जितनिया मर्जी है लाई जाइए उना दी कोई कीमत नहीं होंदी जदों तू नाम दा एका लावेगा ता ओ जीरो दस बोलेगी सौ बोलेगी हजार बोलेगी फिर तेरी मेहनत है जितना सिमरन करी जावेगा तेरे पुन वध दे जानगे तेरा जीवन उच्चा सुच्चा होंदा जाएगा इसलिए गुरु अर्जुन देव महाराज कहंदे ने मैं सारिया धर्मां दा तत तुहानूं दस रहा जितने भी इस धरती ते धर्म शास्त्र हन उना दा तत मैं तुहानूं दस रहा हां कि बिना सिमरन दे बिना भगवान दे भजन दे छुटकारा नहीं हो सकता इसलिए कहो नानक ए तत विचारा।

तृष्णा तो रहत होगी। महापुरखां ने मैनू दस्या कि बिना सिमरन दे कोई होर सुख नहीं है, इसलिए मैं अमृत वेले उठ के इशनान करके सतसंगत विच बह के जपदा हां श्री, सेवा भी करदा हां ते नाल नाल सिमरन भी करदा।

राग गौड़ी दीप की विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस ते आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ज संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

रामकली बड़ा पुरातन और प्रसिद्ध राग है। सवेर समय के रागों में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक करुणा का राग है, पहला मूर्छना करता है, फिर करुणा रस नाल भरपूर कर देता है। रामकली जोगियों का प्यारा राग है। गुरु महाराज जी ने रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर के शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार लिख के इस राग का मजमून स्पष्ट कर देता है।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा ही रहते। शस्त्र विद्या सीखण लग पे, गुरबाणी की विद्या सीखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नी है, होर भी कई कुछ

दिन बाबा दीप सिंह जी संगत दे झूठे कौले माई दे पे थे। आज ये गुण ले जाना बाबा दीप सिंह होने ते कौले माई जान बाबा ही कोले माई दे पे कोला हाथ चे नाना सिमर नाना कोला नाना सिमर नाना कोला इन्हीं के लेवल लग के कोला माई दे पे के गुरु गोविंद सिंह जी नो दस मिनट हो गए कोल खड़ियां पीछे बाबा जी दा उधर लेवे जदों सिंह नाल हुंदे सी गुरु गोबिंद सिंह बाबा जी जदों ध्यान वेख्या साहब खड़े ने ते कहंदे कौला हाथ विच ही ए सवा नाल लिबड़िया हाथ भी लिबड़े ने सवा दे डंडौत करके मालक नू कहंदे जी भुल हो गई आप जी खड़े ते मेरा ध्यान ही नहीं कि आप कोल खड़े बख्श लेना गुरु गोविंद सिंह महाराज दसना ते दूजे सिंघां नू होना कहंदे वीर सिंह कोले माई दा बाबा जी तुहाडी कृपा नाल गुरु गोविंद सिंह महाराज तुहाडी कृपा नाल ते तन गुरु गोविंद सिंह

युद्ध के जितैया रंग भूम के पवैया पार भूम के मटैया नाच तीन लोक गाइया कहूं के तनैया है नमैया जाके पैया हूं छोड़ू हूं के चुना कोड़ जाडू प्रीत लाइया साधना सदैया धूल तानी के पदैया तोर ताम के

बड़े पतवंते कवि जिन्होंने साहब गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पावन चरणा अंदर बिनय की सतगुरु जिन्हां गल्लां आप जी ने कहे हैं जितने वचन महाराज जी वो सब सच हुए ने पर गरीब नवाज सचे पातशाह आप समय नूं जानन हार हो समय दी ठीक समय अनुसार पहचान करन वाले सतगुरु जी आप जी ने कई दफा किया भाई पंथ ते बड़ा बिखड़ा समा आउना पंथ ते बड़ा बिखड़ा समा आउना पर पंथ दी अगवाई करन वाला साहिब गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप तो बगैर कौन है। तो गरीब नवाज साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह नूं कवि ने हाथ जोड़ जोड़ के बेनती की साहब सचे पातशाह महाराज पंथ की राखो ताकि ग्रंथ की मानता रह जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जिन्हों अजे गुरता गद्दी नहीं सी बख्शी गरीब नवाज सचे पातशाह जी चरणा च जदों सिखा ने बेनती की महाराज पंथ की इज्जत पत आबरू आप जी ने बचाई है तो पंथ नूं कुछ ऐसे नियम दिओ जिस दे नाल इन्हां दी सारी रहिंदी दुनिया तक इन्हां दी रही जावे। ते साहिब गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने सिखां नूं एक वचन कहा सी श्री आनंदपुर साहब की धरती दे उपर बैठे हां कि पंथ जिन्ना चिर शब्द ते लड़ लगा रहेगा अकाल पुरख की पूजा विच लगा रहेगा उन्ना चिर एक कुराहे नहीं पै सकता जिन्हें अकाल पुरख की जदों इसने पूजा छड़ दिती ना ये भटक जाएगा कुराहे पै जाएगा। ते गरीब नवाज सचे पातशाह जी दियां ओ गल्लां अते बचन जड़े हैं श्री अबचल नगर हजूर साहब विखे गरीब नवाज सचे पातशाह ने भाई प्रहलाद ते भाई नंद लाल जी की समस्त पेश किते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज उस समय का वातावरण जो रहतनामे अंदर लिखिया है गरीब नवाज वर्णन करते हैं।

महाराज कलगीधर पिता ने भाई नंद लाल नूं कहा भाई आ तैनू दसीए भी साडे रूप केड़े केड़े ने केड़े रूप दे तुसी अज तक दर्शन कीते ने ते केड़े दे दर्शन नहीं कीते ते केड़े दे आद जगाद तुसी दर्शन करने ने।

पहला रूप साडा ए है जिहड़ा तिना गुणा तो परे है, रजो तमो सतो इन्हां तिना गुणों तो परे है। ये जिवें सारी बनस्पति दे अंदर अग है ना, किसे भी दरख्त नूं छांग के वेख लो, भावें ओ अंब दा होवे, भावें पिकर दा होवे, भावें दरख्त निम दा है, भावें टाली दा है, अग सारिआं दे अंदर है। झट ही सारिआं नूं अग फड़ लैगी क्योंकि बनस्पति दे अंदर अग है। ते सारे दुद्धां नूं इकट्ठियां कर लो, भावें ओ घा दा दुद्ध होवे ते भावें मझ दा होवे, गां दा होवे, बकरी दा होवे, किसे दा भी दुद्ध होवे, उस दे अंदर घिओ है। जिवें दुद्ध अंदर घिओ ते बनस्पति दे अंदर अग है। घट घट व्यापरिया परमात्मा वाहिगुरु सच्चे पातशाह जर्रे जर्रे अंदर जिहड़ा वसदा पिया, एक रूप साडा ओ है जिवें जल किसे घड़े दे अंदर पाया होवे। ते जल जल दा रूप है, जल दे अंदर भी परमात्मा वस रिहा है। पहला रूप साडा तिना गुणा तो परे है, कोई उस गुण नूं जान नहीं सकदा, कोई उस नूं वेख नहीं सकदा। वेखण अंदर ते बड़ा कुछ नजर आ रहा है पर अनुभव दी अख नाल कोई नहीं वेख सकदा। इस करके इस गुण दी पहचान होनी मुश्किल है क्योंकि इस दे विच कोई रूप नहीं। ए चक्कर चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन, जे रूप रंग अर रेख देख को कह न सकत जी। ए लंबा चल, इस रूप नूं अखां नाल वेख सकदे हो, अनुभव नहीं कर सकदे।

श्री साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चरणा च मत्था टेकिया। पंज पैसे श्री फल गरीब नवाज ने परिक्रमा कीतियां ते साहिब सचे पातशाह महाराज आसन ते विराजमान हो गए। वेखद्या वेखद्या सिख बैराग अंदर ने बैराग दा समा बनिया होया, ए विछोड़ा सहया ना जाए। भाई दया सिंह आए चरण पकड़े साहिब जी दे ते चरण हाथ विच ना आए ते वैराग दे अंदर आंसू गिर पए। महाराज ये कड़ा रूप है? भाई दया सिंह ये जड़ा तू वेखना ये साडा वास्तव स्वरूप नहीं। वास्तव स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर समा गया, इस करके साडे तैनू चरण नजर आ रहे ने, हाथ च नहीं आए तेरे च, गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणी लग। उस तों बाद भाई दया सिंह जी ने उठ के मथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं टेकिया। सारी सिख संगत ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं मथा टेकिया। वेखद्या वेखद्या साहिब जी ज्योति जोत समा गए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने यह वाक कहे सन सर्व सिखां दे अंदर, भई सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द मैं ले। शब्द गुरु मन दिया गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने गुरियाई अपने हथी दिती ते नमस्कार करके ज्योति जो समा गए। उस समय का वातावरण एहो जिहा सी, सारी सिख संगत दे अंदर वैराग दा शब्द पढ़िया गया।

अगली जो पंक्ति है ना बहुत जरूरी है। एक गुरसिख के कर्तव्य लई है, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय व्रत घोर मड़ी मट भूल न माने। आओ सारे पढ़िए जी।

आख्या क्यों मैं अलमारियां दे मगर लग्या, ये कोई नाल नहीं ले जा सकिया। बड़ी गल है जदों तू पंज पूतक शरीर त्यागेगा ता कोई दो गज कपड़ा तेरे ते पा देवेगा, बस इस तों बाद होर कुछ नहीं। क्योंकि कौडी कौडी जोड़े है जोड़े लाख करोड़, चलती बार ना कुछ मिले ले लंगोटी तोड़। अगे शाहूकार जदों लंगोटी बनते सन ना ते लक विच सोने दी जंजीर पा के रखते सन, ते कबीर जी वेख रहे सन एक बड़ा सेठ जदों मरिया इसका शरीर अगन पेट करन लगे ते घर वालिया ने ओ लंगोटी भी तोड़ ली, ए सोने दी चैनी पाई किधर लै चले। इसलिए आख्या तेरे नाल कुछ नहीं जाना, ये सब इथे रह जाएगा, नाम दा धन तेरे नाल जावेगा। कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरे सवार, कारज साढ़े तीन हथ कनी तो पौने चार, बस इतनी कोई तेरी होंगे।